0: क्या बात है, केस जीत गए तेरे तो दिल हारे, मां दी है मोमबत्ती है मां दी है मोरनी है। क्या बात है, जदों बंदा गाना गाता विच विच मां दी है मोमबत्ती है भी गाना बलकार सिद्धू दा याद आ जांदा, बड़ा शानदार गीत। ते प्रोग्राम सर्ब रेडियो ते नाल दी नाल फिर तुहाडा हुण फायदा भी करवाइए यार, फायदा इस तरीके नाल कोई भी असीं काम कर रहे हां, जॉब कर रहे हां ते लभ रहे हां यार इनकम किवें वधाईए, सैकेंड कैरियर दे लई सानू की कुछ हैल्प गवर्नमेंट कर रही है, कोई ग्रांट कोई लोन की कुछ कर रही है। तो साढ़े नाल जुड़ चुके ने यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी तो, ते करदे हां गलबात जी। वेलकम सारांश।
1: ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।
0: ਜੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ?
1: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ।
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,

0: 100,000 की फंडिंग देती है, जिसका हाफ पोर्शन आज की रेट में नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है।
1: वेरी गुड।
0: अगले एकेडमिक सेशन से जो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स बंद कर रही है, पीछे ना रहे, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक फंडिंग आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में नहीं,
1: ये सीधा पर्सन दे अकाउंट दे विच पैसे जाने हैं, सारांश दे अकाउंट विच नहीं जाने, ऑन हाई नोट। जी जी सारांश जी,
0: बिल्कुल सही बोला आपने। इसमें तो अपना असली नाम यूज करते नहीं, तो लोग तो अपना नाम यूज करते टोनी।
1: सारे भी ग्रांट जो भी लोन मिलता है अकाउंट दे विच सीधा जा रहा है। मैं फिर तुहाडी फीस कहिंदे क्लाइंट सानू बाद विचों देंदा आके, ते मैं यार ये तो बड़ा क्लीयर कट पिक्चर हैगी है भी, ये नहीं सारांश के अकाउंट में गए फिर उन्हें अगे नहीं, गवर्नमेंट सीधे तुहाडे अकाउंट च पैसे ते फिर तुसी सारांश की फी पे करनी है। क्या बात है सारांश जी, ये बड़ा वैसे वधिया चीज़ है, क्रिस्टल क्लीयर चीज़ है, क्लीयर करनी बड़ी जरूरी सी। ते सारांश जी नाल दी नाल इहदे लई एलिजिबिलिटी की है, की क्राइटेरिया, किवें असीं क्वालीफाई कर सकते हैं?
0: बिल्कुल जी, आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो ही आप हमें कॉल करें, क्योंकि इस काम में कोई सेटिंग नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। आप पीआर है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, आपकी फैमिली इनकम 2024 के नोटिस और असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है, कम, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। आपको पता होगा चाइल्ड बेनिफिट बंद हो जाता है अगर आपकी इनकम 70,000 से ऊपर हो। आपको पता होगा अगर डेंटल केयर बेनिफिट बंद हो जाता है सीटीसीपी वाला, डेंटल केयर वाला गवर्नमेंट का, अगर आपकी इनकम 90,000 से ऊपर चली जाए। सेम वे में एजुकेशन फंडिंग में आपको ग्रांट फंडिंग तभी मिलती है, आपकी फैमिली इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट में कम है, लेस देन $70,000 है। कॉल करें, आसान से स्किल डेवलप वाले कोर्स करें, फुली ऑनलाइन, आप कहीं नहीं जा रहे, 2 से 3 घंटे लगा रहे मंडे टू फ्राइडे, फोन पे तो हम लगे रहते हैं सर, फोन पे क्लास लगा लो, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल कर लो, 30 से $100,000, जिसका हाफ पोर्शन तो ग्रांट है आज की डेट में।
1: जी क्या बात है। ते नाल दी नाल सारा जी, इहदे विच कोई होर भी कोई गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज ऐड कीते आ आपां?
0: हाँ जी, इसमें देखिए हमारे पास टोटल 8 से 10 कोर्स हैं, जो कि आसान, फुली ऑनलाइन, नो एग्जाम्स, ओनली असाइनमेंट्स। कितने ही सेल्फ एम्प्लॉयड, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, सिंगल मदर, अनएम्प्लॉयड हमारे क्लाइंट्स हैं। आज भी लाइक 6 बंदों के फंडिंग उनके खाते में गिरी, जिन्होंने मई और जून में स्टार्ट करा था। कोई एज लिमिट नहीं है, पेंशन पे हो, एलिजिबल हो, बट आप ओंटारियो में रहते हैं और इसमें कोई चाबी नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है। स्किल डेवलप करें, फंडिंग हासिल करें।
1: बिल्कुल नहीं, देखो बहुत वधिया चीज़ है, तो सारा कोई चीज़ क्रिस्टल क्लीयर है, रिक्वायरमेंट की ने, होर भी इनफॉर्मेशन तुसी चाहिए है तुहानू, तो जरूर तुसी गलबात करो यूनी ग्लोबल एडवाइजरी ते। ते भाई जी एड्रेस भी जरूर शेयर करे जे।
0: बिल्कुल जी, और फंडिंग का नाम सुन के हमें लगता है कोई कुंडी होगी, चाबी होगी, यहाँ पे कोई ऐसे कुछ नहीं है सर, दाल में कुछ काला नहीं है, ठीक है। और बाकी हमारी फीस कितनी है, काम होने के बाद फंडिंग किसके अकाउंट में आती है, आपके पैसे बाद में, आप लोग जब फंडिंग आपके अकाउंट में आ जाती है 30 से 90 डेज में, तो आपने हमारी फीस देनी है 199 या 499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स। हमारी नजर हमारी गुल्लत पे, आपकी फंडिंग पे नहीं है, इतनों को हेल्प कर चुके हैं। आज भी लाइक अब मान के चले मुझे 6-7 लोगों के जो पैसे आए हैं $200-500, मुझे पता ही नहीं वो कौन है, मेरे स्टाफ को पता होगा, राइट। बट हम लाइक हमें मांगने नहीं पड़ते क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोग मिठाई के डब्बे लगते देखे जाते हैं हमें, ठीक है।
1: एक बार मैं भी ऑफिस बैठा तो बाई जी आए, कहते जी भी मजा आ गया, तो मैं इंडिया वैसे अकाउंट्स की सी, पर इतने आके मैं कोई रैंडम जॉब कर रहा सी, पर मैं फिर आके अकाउंटिंग एक्स्ट्रा ज्वाइन की, कोर्स किया, तो हूँ मैं अपनी फील्ड के काम कर रहा, तो बंदा डब्बा भी लैके आया सी, क्या नहीं सर?
0: बिल्कुल जी इसमें आप यही है, इसमें कुछ चाबी नहीं है, ऐसा भी नहीं आपने उस फील्ड में जॉब करनी है आफ्टर द कोर्स, फुली ऑनलाइन आसान जो कोर्सेज में गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है। जब आपकी गवर्नमेंट रिफ्यूजीज के होटल बिल पे $1.1 बिलियन लगाती है, तब तो आपको हैरानी नहीं होती। नहीं, जब गवर्नमेंट आप पे एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है, तो आपको लगता है चाबी है कोई। फैमिली ऑफ 4 को अप टू $80,000 बनता है, उसमें से 40,000 ग्रांट है, 40,000 ऑप्शनल लोन है, 0% है, जो कि 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना होता है। 15 साल में उस लोन को लौटाते हैं, ब्याज है 2.5% साल का, जो कि कुछ भी नहीं है।
1: कुछ
0: अगर फैमिली ऑफ 5 है, फैमिली साइज ज्यादा, अप टू 100,000 की फंडिंग बनती है। फैमिली ऑफ 2 है, रिटायर्ड कपल, अप टू 45,000 की फंडिंग बनती है, उसमें से $25,000 ग्रांट है। कब तक? सिर्फ इस हफ्ते तक। अगर आप कल या परसों तक आते हैं, मंडे ट्यूजडे तक, तो ही आप इसका ग्रांट की बात करें। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, हमारे घर की बात नहीं, हम तो बढ़ा देते, कुछ नहीं कर रहे। आपका

0: फायदा है हमें क्या, मैं 200-500 फीस आप ही तो कोई और दे देगा।
1: बिल्कुल
0: नंबर नोट करें आप हमारा, पहले एड्रेस ले लीजिए, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरनतारी डेयरी पे, मंडे आप आ सकते हैं अगर आपको लग रहा क्वालिफाई करते हैं। बाकी आप हमें कॉल अभी अभी अभी करें, वी विल डू द क्विक असेसमेंट राइट नाउ। नंबर 437-264-31-75 437-264-31-75 हुणे कॉल करो, एस्टिमेट लो 437-264-3175 437-264-31-75 नंबर नंबर नंबर नोट करो, आपका फायदा आपके पास 437-264-31-75 437-264-3175
1: क्या बात है, हुण ते इन्ने टाइम रिपीट करता तुहाडे कोल फीड होना चाहिए। जे फिर भी तुहानू नहीं पता लग्या सानू तुसी कॉल कर सकते हो मेरे नंबर ते, जां फिर गूगल ते जाके भी चैक किया जा सकता है। पर मैं एक बार फिर दस देना बड़े स्लो स्लो तरीके नाल, पहला गेयर पा के 437-264-3175 437-264-3175 सना जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जुड़ते हैं दोबारा फिर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बिल्कुल जी चलते हैं आप अज के विषय के वल, बड़ा ही शानदार इंटरेस्टिंग एक विषय। तो कहें जिंदगी दे वेच हर एक इंसान चाहता भी यार मैं हैल्दी रवान, तंदुरुस्त रवान, स्वस्थ रवान, एन कैमो कैम रवान, पर बड़ा कुछ सानू सानू सोचना पैंदा भी यार की कर सकते हैं, किहड़ियां चीज़ां नू अपनाया जा सकता है, की हैल्दी आपां सिर्फ शरीर की गल कर रहे हैं जां आपां गल कर रहे हैं अपने मन की भी। तो तुहानू आपां अज पुछना चाहवांगे एक तंदुरुस्त आदमी की की पहचान है, एक तंदुरुस्त हैल्दी रहने के लिए दिमागी तौर के उपर जिदे विच सब कुछ आ गया सानू की चाहिदा है। तो मैं जे इनू सौखे तरीके नाल गल करनी होवे ते बंदा कहिंदा जी अपनी नींद नू तुसी पूरा रखो, ये नहीं भी 5 घंटे सो ले राती जा खुली फिर फोन ते लग गए रील ते, नहीं कहिंदे नींद अपनी प्रॉपर लो, 7 घंटे एवरेज है, कोई 6 लैंदा कोई 8 लैंदा, पर जदों तक दिमाग तंदुरुस्त नहीं सारा दिन बंदे दा एवें लंघ जांदा है। हैल्दी मूड रखन दे रही जिंदगी दे विच स्वस्थ तंदुरुस्त रहन दे लई सानू केड़ियां चीज़ां अपनानियां चाहीदियां ने, नींद वधिया होनी चाहीदी है, ते होर असीं तुहाडे कोल पुछदे हां 905-673-3337 905-673-3337।

0: 1646-1646-647-1646-1616. थैंक यू सो मच सरबजीत।
1: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। 647-1646-1616-647-1646-1616। उमरप्रीत जी शुक्रिया, थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच सरबजीत,
1: थैंक यू सो मच। चलिए एक बड़ा शानदार गीत सुनिए जी, सुरजीत खान का गाया होया तेरे मेरे प्यार नू नजर लग जावे ना। बड़ा शानदार गीत है ते आपां जरूर इस गीत नू सुनदे आ। प्रोग्राम सरब रेडियो ते स्टूडियो का नंबर 905-673-3337-9056733337। तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हाँ पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भुलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।

0: क्या बात है जी, बड़ा शानदार गीत सुरजीत खान दे वल्लों ये गाया होया। ते उस तो बाद हुण चलदे आ साडे नाल लाइन दे उपर, एक बार फिर जुड़ चुके ने सारांश जी फ्रॉम यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो। सारांश जी वेलकम।
1: फिर सत श्री अकाल जी। एंड देन लाइक सिर्फ यही वीक रह गया है, सिर्फ टेक्निकली दो दिन रह गए हैं, मंडे एंड ट्यूजडे। आपने अगर अभी तक स्किल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग अप्लाई नहीं करा है तो आप बहुत चीज मिस कर रहे हैं। 30,000 to 100,000 की फंडिंग गवर्नमेंट आपको आपके खाते में दे रही है, जिसका मेजर पोर्शन तो ग्रांट्स है। आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन, घर पे घर के कंफर्ट से करें। नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, एग्जामिनेशन नहीं है, फुली ऑनलाइन है। और लाइक आसान सी असाइनमेंट्स हैं, तो क्रेडिट चेक इसके अंदर नहीं होता। फंडिंग आपके खाते में आती है, हमारे खाते में नहीं आती। कोई चाबी कोई मीठी बातें नहीं है इसके अंदर। 8 साल से बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं। प्रॉपर ऑफिस है, 8 एम्प्लॉइज आपके लिए काम कर रहे हैं। हर टेरिटरी पे ऑफिस है, आप मंडे आ सकते हैं। फैमिली ऑफ 4 को अप टू 80,000 की फंडिंग बन जाती है। हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, जिसमें से 40,000 तो नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है आज की डेट में। जो रेस्ट पोर्शन है $40,000, 0% पे ऑप्शनल लोन। जितना फैमिली साइज ज्यादा, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, इनकम कम कम कम है आपकी नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, सच है। सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, अच्छा बेनिफिट है जी। कोई चाबी नहीं है इसके अंदर। और हमारी फीस काम होने के बाद $199 या $499 है। हमारी नजर हमारी गुल्लक पे, आपकी मोटी फंडिंग पे नहीं है, कोई लालच नहीं है हमारे अंदर। तो कॉल करें, ऑफिस आए। ये कोई जुआ नहीं है कि पैसे आ सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं है ये। ये ऐसा भी नहीं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है कि मरने के बाद पैसे मिलेंगे। अब आज कोर्स स्टार्ट करते हैं, 30 to 90 days में आपके खाते में पैसे आ जाते हैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट। ऑफिस आए, नंबर नोट करें, कॉल करें 437-234-31-75, 437-234-31-75। उन्हें कॉल करो, एस्टिमेट लो 437-264-3175, 437-234-31-75। आपकी गवर्नमेंट जब लाइक $60 billion गवर्नमेंट का डेफिसिट है लास्ट ईयर का, $30 billion तो यूक्रेन को दे दिया, $2 billion आप पे लगा रही है एजुकेशन फंडिंग में, तो कोई चाबी नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, इसको लें, इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रांट्स बंद होने वाले हैं। 437-234-31-75, 437-264-3175।
0: क्या बात है, 437-234-31-75, 437-264-3175, 437-264-3175। ते एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड मिसिसागा दे विच, होर ओंटारियो ते डेयरी इंटरसेक्शन दे कोल, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी। सारांश जी थैंक यू।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਓਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ GNE ਮੋਰਗੇਜਿਸ ਦੇ ਮਯੰਕ ਪਟਨਾਗਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 647-702-2023, 647-702-2023, 647-702-2023। ਤੇ ਸੂਟ ਲਹਿੰਗੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਜਾਮੀ ਲੌਂਗ ਡਰੈਸਿਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੇਅਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਹੈਂਡਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, SUKH.designer.boutique, ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੈਸਿਸ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 647-203-3365, 647-203-3365। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਰੇਡੀਓ 647-707-6454 ਤੇ 647-770-6454। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

जिन कह मनो से आवाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वड़ियाईया कह नानक सुनो संतोष शब्द धरो मेरा आधारो वाजी पंच शब्द तिद घर सुभाग है घर सुभाग है शब्द वाजी कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंट तुम्हारे तुर कर्म पाया तु जिनको से नाम हर कह लागे कह नानक तैस पोआ तिद घर अनाद वाजी।

0: माया कमोनी दिन की जंट बोली पाइया कुर्बान किया इस दिन मोह मिठा लाया कह नानक माया पाया
1: Rosie and Williams Parkway में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 कॉल कीजिए 905-456-2733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
2: ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ

0: मन प्यारी तू सदा सच समान दे आगम
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिरोही तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

भारत गुरते पाया भक्तां की चाल निराली चाला निराली भक्तां केरी दिख मार चलना लाभ लो अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना खनयो तिखी वालो ने कीत मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिने आप तजार वासना समानी कह नानक चाल भक्तां जुग हो जो निराली ज्यो तू चला है तिव चले स्वामी और क्या जाना गुर तेरे जीव तू चला है तिवे चला जिना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाए से हर सदा त्यावे जिसनों कथा सुनाए आप।

नमस्ते श्री कुल देवी कुल आराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्व बंध्यां महाघोरां त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वन्दे त्वां राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वात्मत्सलोऽहं आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुप्रति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम्।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 हर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन क्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 2132-1165।

ॐ ॐ शिखायै वसुत ॐ ह्रैं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वसुत ॐ ह्राः अस्त्राय फट पठ ध्यानम् वामेकरे वैरवहं वहन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाध्यम् दधानमाख्यामात सुवर्णवर्णम् भजीज्वरत्कुण्डलमाञ्जलिहाय अञ्जनी गर्भसम्भूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह तामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मापय मापय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मि कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्राः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं कृत्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन महाराज।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1115।
1: जी हाँ, तो आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और बहुत ही बढ़िया से मौसम है आपके लिए, तो अभी बरसात के भी थोड़े आसार हैं, पर बरसात के जो थोड़े से आसार हैं वो थोड़ा आपको रिलीफ देने के लिए है। गर्मी ज्यादा होती है तो फिर बीच में आपको थोड़ा ब्रेक मिलनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, तो छतरी तो जरूर होनी चाहिए। जब अगस्त का महीना भी, जुलाई का महीना भी खत्म होने वाला, 7 महीने साल के निकल गए हैं, कैन यू इमेजिन, टाइम ऐसे हाथ से सरकता जा रहा है। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिजन रिपो आपके लिए बहुत बढ़िया आपके लिए सर्विसेज देते हैं, बहुत सालों का तजर्बा है। तो लंदन में वो रोड पे उनकी लोकेशन

आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो में जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया वाली चाहिए और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा सामान आपके लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? जी हाँ, तो ये सारा सामान ना टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्क में है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 9057900045 पर कॉल कीजिए। 9057990045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए। अगर आपने राखी पे अपनी बहन को बढ़िया सा गिफ्ट देना है, टीवी बढ़िया सा देना है, तो आप अभी से बुकिंग कर लीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देते हैं और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपको बड़ी बढ़िया सर्विसेज देंगे और आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे। तो आप कॉल कर लीजिए, ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-4 पर आप कॉल कर सकते हैं HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना ऑर्डर करना है, मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे। तो और जानकारी के लिए 905-814-1780 पर कॉल कर लीजिए, 9058-141-730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं कटी पतंग फिल्म से। Let's go to Kishore Kumar ka gaya hua lata ji ka gaya।

तोड़ेंगे बदाम चोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली।

जमाना, क्या करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी भी आएंगे बन हम होली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली।

में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये जो गाने हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो 647-773-7640। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमें मैसेजेस सेंड करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जुड़े करते हैं तो कुछ इस तरह भी हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें, अगर लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको बड़ी बढ़िया सेवाएं देंगे मास्टर कोलिजन डिपो वाले। तो कोर रोड में मौजूद है लंदन में। अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाकर आप और जानकारी ले सकती हैं। तो आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देंगे। अब अगर हमने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए होने के लिए किस्मत को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही बुक कर लीजिए 416-524-804 416-524-6704। अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, बढ़िया प्राइस में लेके आना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन इनकी ग्वाल्फ में है। और आप अगर बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपको ये सारा सामान मिलने वाला है। तो आप अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत। आपको तो याद होगा कि वहाँ पे वृक्षों के ऊपर वो जो बड़ी सी रस्सी होती है उसको बांध करके सभी झूले डालते हैं और फिर सभी बार बार झूलते हैं, तो लड़कियाँ सभी इकट्ठी होती हैं तो झूला झूलती हैं, और यही तीयां का मेला भी यहीं पे उसी का सभी सहेलियों के पास इकट्ठी होती हैं तो अपना फन करती हैं। तो आइए, अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज। 416-524-804 416-524-6704। आप किचनर वाटरलू गल्फ में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो वो नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, हाईली प्रोफेशनल। तो 519-546-1260 519-546-1260।

जी हाँ, तो एक बार फिर सब आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए बहुत बढ़िया सा गीत मैंने चुना है। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप नए फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया गैजेट्स आपको किचन के लिए चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है, तो आप अपने उनकी स्पेशल देखो topchoiceelectronics.com। तो फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-749-0045-7999-0045 तक। तो अब आपके लिए गाने हैं, ये जो गाना आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ है बहू बेगम फिल्म 1967 से। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

ऐसा स्वागत है अभिनंदन है। तो अब आपको थोड़े नए वाले गाने में ले चलें, तो क्या ख्याल है? बहुत सारे नए गाने भी हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए 416-524-4416-524-6720-4। आपको ट्रैक्टर पेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रैक्टर पेयर टायर सेंटर 1715 सिस्मत रोड पे मौजूद है। तो वो बहुत बढ़िया आपको सर्विस देते हैं। तो 1715 सिस्मत रोड मिसी सागर में मौजूद है। तो अब अगर आपने किसी तरह के भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप 905-625-0055 पर कॉल करो, 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी लेना है, किचन गैजेट है, तो और करिए 905-700-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटी।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई मीन हैव अ वंडरफुल वीक। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, नानक राम चढ़ी कला तेरे पानी स्वर्दा पला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

जिन कै मनो से आवाजे शब्द कनेरे कै नाम सच्चे साहब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वड़ियाईया कै नानक सुनो संतो शब्द धरो मेरा आधारो वाजी पंच शब्द तिद घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजी कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कष्ट कुमारिया तुर कर्म पाया तु जिनको से नाम हर कै लागे कै नानक तैस पोआ तिद घर अनाद वाजी।

0: दिन का शब्द सत्य सुवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे आवे ता सो जंदे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक परम भूले फिर दिस एक नाम लाख सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना पाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे पावे आओ संत प्यारे हो अकत की करा पाणी अकत केरे के द्वार पाई है तन मन धन सब सो गुर को हुकम ने पाई है माया कमोनी दिन की जिंट बोली पाईया कुर्बान किया इस जिन मोह मिठा लाया कह नानक न पाया
1: Williams Park में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-7333 कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
2: ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ

0: ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਂਦੇ ਆਦਮ
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400।

भारत गुरते पाया भक्तां की चाल निराली चाला निराली भक्तां केरी दिख मार चलना लाभ लो अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्यो तिखी वालों ने कीत मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिने आप तजार वासना समानी कह नानक चाल भक्तां जुग हो जू निराली ज्यों तू चला है तिव चले स्वामी और क्या जाना गुर तेरे जीव तू चला है तिव चला जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन्ना मिलाए से हर सदा त्यावे जिसनों का

नमस्ते श्री कुल देवी कुल आराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्व बंध्यां महाघोरां त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वन्दे त्वां राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्मत्सलोऽहं बाध्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्रीकुलदेवी स्तोत्रम् श्रीकुलदेव्या।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 हर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 016-213-1165

नरेंद्र कृतनम कुंजरारी भंजनम निरंजनम सुखाकरम मंजुकंज पत्र नेत्र राजितम विराजितम गोपाल बाल चार चोर बाल।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਪਿਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1135।
1: जी हाँ, तो आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और बहुत ही बढ़िया से ये मौसम है आपके लिए, तो अभी बरसात के भी थोड़े आसार हैं, पर बरसात के जो थोड़े से आसार हैं वो थोड़ा आपको रिलीफ देने के लिए है। गर्मी ज्यादा होती है तो फिर बीच में आपको थोड़ा ब्रेक मिलनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, तो छतरी तो जरूर होनी चाहिए। जब अगस्त का महीना भी, जुलाई का महीना भी खत्म होने वाला, 7 महीने साल के निकल गए हैं, कैन यू इमेजिन, टाइम ऐसे हाथ से सरकता जा रहा है। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए बहुत बढ़िया आपके लिए सर्विसेज देते हैं, बहुत सालों का तजर्बा है, तो लंदन में वो रोड पे उनकी लोकेशन है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो में जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना चाहते हो, बढ़िया

राखी पे अपनी बहन को बढ़िया सा गिफ्ट देना है, टीवी बढ़िया सा देना है, तो आप अभी से बुकिंग कर लीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देते हैं और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपको बड़ी बढ़िया सर्विसेज देंगे और आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे। तो आप कॉल कर लीजिए, ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-7004, 416-524-6704, 416-524-7004 पर आप कॉल कर सकते हैं HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना ऑर्डर करना है, मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे। तो और जानकारी के लिए 905-814-1703 पर कॉल कर लीजिए, 9905-814-1730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं कटी पतंग फिल्म से। लेट्स गो टू किशोर कुमार का गाया हुआ लता जी का गाया।

क्या करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी देर, आएंगे बस हम होली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे, हम होली।

संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये जो गाने हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो 6477737640। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमें मैसेजेस सेंड करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो कुछ इस तरह भी हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें, अगर लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको बड़ी बढ़िया सेवाएं देंगे मास्टर कोलिजन डिपो वाले, तो कोर रोड में मौजूद है लंदन में। अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज देंगे। अब अगर हमने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए होने के लिए किस्मत को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही बुक कर लीजिए 416-524-704-416-524-6704। अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, बढ़िया प्राइस में लेके आना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन इनकी ग्वाल्फ में है। और आप अगर बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट तो चाहिए, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपको ये सारा सामान मिलने वाला है। तो आप अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत। आपको तो याद होगा कि वहाँ पे वृक्षों के ऊपर वो जो बड़ी सी रस्सी होती है उसको बांध करके सभी झूले डालते हैं और फिर सभी बार बार झूलते हैं, तो लड़कियाँ सभी इकट्ठी होती हैं तो झूला झूलती हैं। और यही तियां का मेला भी यहीं पे उसी का सभी सहेलियों के पास इकट्ठी होती हैं तो अपना फन करती हैं। तो आइए, अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज 416-524-804 416-524-6704। आप किचनर वाटरलू गल्फ में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो वो नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, हाईली प्रोफेशनल। तो 519-546-1260 519-546-1260।

0: हाँ, तो एक बार फिर सब आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब आपके लिए बहुत बढ़िया सा गीत मैंने चुना है। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया गैजेट्स आपको किचन के लिए चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है, तो आप अपने उनकी स्पेशल देखो topchoiceelectronics.com। तो फिर अपने ऑर्डर बुक करो 905-749-0045-799-0045 तक। तो अब आपके लिए गाने हैं, ये जो गाना आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ है बहु बेगम फिल्म 1967 से। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: में भी अपना मजा है।

में बहुत ही ऐसा स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब आपको थोड़े नए वाले गाने में ले चलें, क्या ख्याल है? बहुत सारे नए गाने भी हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए 416-524-8044-16-52-46-704। आपको ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर सेंटर 1715 रोड पे मौजूद है, तो वो बहुत बढ़िया आपको सर्विस देते हैं। तो 1715 रोड मिसी सागर में मौजूद है। तो अब अगर आपने किसी तरह के भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप 905-625-0055 पर कॉल करो, 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी लेना है, किचन गैजेट है, तो और करिए 905-700-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई मीन हैव अ वंडरफुल वीक। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी स्वर्ग दा पला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikkiya nikkiya kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर, तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: मेरा जी मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $50 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: हॉलदार गंडा सिंह रिपोर्टिंग सर। अरे की है मतलब बंदा की गल की करता है?
3: ए मैं तो आप बहुत दुखी हां।
2: दो गई है बकवास ही करिए ना, मैं बाहर तुरया हुंदा, मैं गड्डी सुन दिया, मैं कहया भी ये बंदा बोलन की डया के ने अंग्रेजी दी लत तोड़नी लाई है।
3: पता की मैं भी सच्ची बहुत दुखी है इदे तो।
2: ते बंदा पूछे भी तू शर्मा जे तेनु नहीं आउंदी तू ना बोल।
3: एग्जैक्टली।
2: नाले कुत्ते नु भौंकी जानी अंग्रेजी नाले आउंदी नहीं।
3: पता की गंडा सिंह जी
2: मेरे मुंह गाला निकल गया बिना गड्डी, फिर मैं कह भी नहीं मानू समझा गंडा सिंह इत्थे महकां लगियां हुंदियां ते फिर महकां नाल आवाज चले जांदी अग्गे।
3: माइक
2: ओ मैका हां
3: हां जी हां जी, पता की गंडा सिंह जी तुसी ही ता ओ जेड़े अकलमंद हो, मतलब इत्थे आके मेनू मिलदे हो।
2: ए ता है,
3: ए सारा दिन सोचो मैं इदे नाल किद्दा बैठी
2: हां। मैं दरअसल अज इस करके आया, मेरे को टाइम ही नहीं जानदा, मेनू ए दस पी डेट की हुंदी है?
3: डेट मतलब की किसे गोरी नाल चल रहे हो?
2: पता कोई नहीं, मेनू आंदी आई वांट टू गो टू डेट।
3: अच्छा,
2: ते मैं क्या भी यार डेट मतलब हुन मैं कैलेंडर लेके जा बड़िया। नाराजी होगी पीपल फलांटी लेटर पटरों ने मैं क्या।
3: अच्छा,
2: मैं भी यार बड़ा गर्म होने तो पहला मैं पूछा ही
3: डेट ते मतलब के जिमे बार उदनाल चाह पानी ते कॉफी पीन जिमे चाहिदा।
2: सीधा कह नी मैं फिल्म देखनी अज डेट ते जान दा मतलब हां।
3: ओनू पता नहीं सी ना भी थोनू डेट नहीं मतलब पता।
2: अच्छा कोई चक्कर, पता की मैं तरन सुधी गल मैं बिना पंजाब ही फोन लाया। मैं कह यार गोरी डेट डेट करी जांदी ओहो जे मेरा यार हुशंदा कहिंदा गंडा सिंह तू पंगा पा ले लगदा गोरी ते लगदा तेनू कचहरी च तरीक तरूक ते भुगतण नू खण्णू फिरदी
3: है। मेरे अरबा
4: तुसीं अपने बिजनेस नू प्रमोट करना चाहुंदे हो, सफलता दी कुंजी साडे कोल है। तुसीं मॉन्ट्रियल टोरंटो या वैंकूवर अंदर अपने बिजनेस दा संदेश देकर कामयाबी दी मंजिल वल जल्दी ही वध सकदे हो। स्पेशल पैकेज दा फायदा उठाउण लई तुसीं साडे हैड आफिस नाल संपर्क करो 416-677-0609 416-677-0609।
5: नहीं करला चुगलियां तो
6: फिर
5: आप ही महला चेंज कर
3: लेने तेरे छड़न लगे ने नहीं सोचना भी कित्थे
5: पैंदियां मैं देखूंगा पुलिस च है नी।
3: हेलो
5: गल नहीं बात नहीं गल करना जो कर
3: शर्त ने पहली शर्त यह होंगी है की जो उस घर कोई खरीदने लिए आ गया उसे वेले घर खाली करना पेगा छड़ना पेगा। दूजी शर्त है कि घर जेड़ा इस तरह होना चाहिए जिम्मे ओ कोई भी ना रहा हो मतलब किसी चीज कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तीजी चीज है जेडे कह लो शीशे वगैरह एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ने। चौथी चीज आ कि बेड जेडे ने एदा होने चाहिए ने जिम्मे ओ कदी कोई पहला सुता ही ना हो मतलब बिलकुल नवा लगना चाहिए घर। हाँ
5: नहीं एक मिनट
3: हाँ
5: ये मतलब उथे घर च रहन दे ले सोख आ के सजा है
3: चंगे
5: काम दस मेनू
3: चल ठीक है।

0: हेलो एम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात करने लिए हुने कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444